या तना तेरंग गर कब सर्वी था तुम लीसन देव जी निशुन ये कोड़ गुनु गला मान चंदी सो गलं वेरा सिर दिन संग से गुनु गो दोनों दिन सामने लग जे करंग किंग टो कोची रकम दी तीसो तुम कोर्क बताम जिन सिनी लीसन अंपे पर गाप से श यंग वार्क बस जो लीसन आशिंग किंग जे टो बोल में ना ना ची डाटा लीसन दला संजी बिसां